नमस्कार, सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। आज दिन सोमवार, सक्संबत 1948, अश्विन महीने की 13वीं तिथि, अंग्रेजी सन 2026, अक्टूबर महीने की 5 तारीख है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं आज की पहली सभा।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोता सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्लंग केंद्र है।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:10 पर सुनवाए जाएंगे भक्ति गीत। 6:40 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का। 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिलीक किए जाएंगे। 7:05 पर आज का दिन। 7:30 पर आप सुनेंगे बीट्स ऑफ हर्ट के तहत कुछ फिल्मी गाने।

सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 का समय रहेगा पूर्वोत्तर समाचार का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से। 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो की रंगोली। सवेरे 9 बजे आप सुन पाएंगे पुआरांचलिक पटोरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

हमारे स्थानीय वासियों के कार्यक्रम में रोजाना की तरह सबसे पहले सुनेंगे खेल मा कार्यक्रम 9:15 पर होयलाल थिंग न्यूपम और उनके साथियों की आवाजों में आप सुनेंगे भक्ति गीत। 9:25 पर रंगखोल कार्यक्रम के तहत सुनवाए जाएंगे भक्ति गीत लोरेन फन ललपुई रंगखोल और उनके साथियों की आवाजों में। 9:35 का समय रहेगा जयंतिया कार्यक्रम का, भक्ति गीत पेश करेंगे डेनियल तारियंग और उनके साथी। 9:45 पर व्याते कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आधुनिक गीत गंगा की गमलाई और उनके साथियों की आवाजों में।

सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी बीच होंगे समाचार, दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 1 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, शाम के 4 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। दोस्तों, ये थी जानकारी आज के पहली सवा के मुख्य कार्यक्रमों की।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम। आज सोमवार है, पेश है शिव भजन।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। आइए, आपको सुनवाए जा रहे हैं कुछ चुनिंदा देशभक्ति गाने।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आपको सुनवाए जा रहे हैं हिंदी में समाचार, लेके जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुलां आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुलां वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामुलां आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामुलां से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशामुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, लेके गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का दिन।

0: चलिए शुरुआत करते हैं पोएम ऑफ द डे के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम आदित्य जोशी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल है। मैं एक कविता बोलने जा रहा हूँ। कविता का नाम है वही लोग और कवि का नाम है एतबार सजित। शायद बिछड़ना हमारी किस्मत में ही लिखा था, पर कौन जानता था यह रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि उनके बिना रहना भी इतना मुश्किल हो जाएगा। अब भगवान से बस इतना ही मांगता हूँ कि अगर दूसरी जिंदगी मिले तो वही लोग फिर मिले, वही चेहरे, वही क्लासरूम, वही हंसी, वही बातें, वही अपनापन मुझे फिर मिले। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बस यादें रह जाती है, कुछ अधूरी बातें, कुछ अनसुनी यादें और वो लम्हे जो वक्त के साथ नहीं गए, बस दिल के अंदर ठहर गए। अब नहीं जानते फिर से कब मिलेंगे, पर एक दिन हम सब खिलेंगे।
0: दोस्तों, आज 5 अक्टूबर है। इतिहास में आज के दिन यानी 5 अक्टूबर को बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं देश विदेश के इतिहास में घटी। आइए आज फिर से उन पर एक नज़र डालते हैं।

महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1676 में इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा डालने का अधिकार मिला था। फ्रांस की क्रांति के दौरान पेरिस की महिलाओं ने सन 1789 में वर्सेलिस तक मार्च किया। अलंटो टी क्रॉस ने सन 1880 में पहले बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया था। पुर्तगाल में राजशाही खत्म हो गई और गणतंत्र की स्थापना सन 1910 में हुई थी। फ्रांस में महिलाओं को सन 1944 में मताधिकार मिला। पहले कान फिल्म समारोह का समापन सन 1946 को आज के दिन हुआ था। जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो सन 1962 को रिलीज हुई। ब्राजील की संविधान सभा ने सन 1988 में संविधान को मंजूरी दी। मीरा साहिब बीवी सन 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को सन 1989 में मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आयरलैंड के कवि एवं साहित्यकार हिनी को सन 1995 में वर्ष 1995 के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई। सन 1997 भारत के टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस तथा महेश भूपति ने जिम कुरियर तथा एलेक्स ओब्रायन को पराजित कर चाइना ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला सन 1999 में लिया। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मिलोसेविच के खिलाफ सन 2000 में विद्रोह आरंभ हुआ। पश्चिम एशिया पर अरब देशों के प्रस्ताव का अमेरिका ने सन 2004 को विरोध किया था। खुशमिजाजी में सन 2005 को भारत चौथे नंबर पर था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दूसरी जगहों का परीक्षण सन 2008 में शुरू किया। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक डेनियल शेचमैन को रसायन में स्पुटनिक क्रिस्टल में परमाणु संरचना की खोज के लिए सन 2011 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा सन 2011 में की गई। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2011 में निर्णय दिया कि सरकार या उसके विभागों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से अधिग्रहित की गई जमीन का उपयोग नहीं बदला जा सकता, न ही इस जमीन को निजी प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को या व्यावसायिक कंपनियों को दिया जा सकता है। एप्पल द्वारा सिर्फ बोलने से एसएमएस व ईमेल करने में सन 2011 में सक्षम आईफोन 4S जारी किया गया।

अब आज के दिन जन्मे कुछ मशहूर व्यक्तियों की बातें करेंगे। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म सन 1524 को आज के दिन हुआ था। सिनेमेटोग्राफर का पेटेंट कराने वाले लुईस जिया ल्यूमियर का जन्म सन 1864 को आज के दिन हुआ था। समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी किशोरीलाल मसरूवाला का जन्म सन 1890 में हुआ। मैकडोनाल्ड्स को दुनिया के सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले रे क्रॉक का जन्म सन 1902 में आज के दिन हुआ था। ध्रुपद थमार शैली के गायक राम चतुर मल्लिक का जन्म सन 1902 में आज के दिन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रिची बेनो का जन्म सन 1930 में आज के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिक व्यंग्यकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता चो रामस्वामी का जन्म सन 1934 को आज के दिन हुआ था।

दोस्तों, आज ही के दिन कुछ मशहूर लोगों ने दुनिया से अलविदा कहा। ये जानते हैं उनके विषय में। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन सन 1805 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का निधन सन 1937 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का निधन सन 1981 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के पेशेवर विलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स का

हैं सन 2003 में आज के दिन हुआ था। एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का सन 2011 में 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का दिन। इसी क्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं कुछ सुमधुर गाने।

आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आज का दिन, साथ ही सुनवाए जा रहे थे कुछ सुमधुर गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अपलंग केंद्र है।

0: आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है मेरी बात।
2: आकाशवाणी हफलंग को सुन

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषा और मैं हाफलोंग की निवासी हूँ। आज के समय में लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता की बहुत बातें होती है, लेकिन व्यवहार में अब भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वे किसी न किसी पर निर्भर रहें। इसी विरोधाभास को समझने और ये स्पष्ट करने के लिए कि आत्मनिर्भरता लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है, मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। लड़कियों को अपने पैरों पर इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि जीवन हमेशा सुरक्षित और सहयोगी नहीं होता। आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर लड़की अपने निर्णय खुद ले सकती है, गलत या अपमानजनक व्यवहार को सहने के लिए मजबूर नहीं होती और ज़रूरत पड़ने पर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकती है। आत्मनिर्भरता उसे केवल पैसा नहीं देती बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और विकल्प देती है। जो लड़की खुद के लिए खड़ी हो सकती है वही समाज में बराबरी की जगह बना पाती है। धन्यवाद।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। दोस्तों, आप प्रस्तुत है कार्यक्रम बीट्स ऑफ हर्ट। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाए जा रहे हैं पायल को केंद्र में रखकर कुछ फिल्मी गाने।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
4: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
5: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
4: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
5: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
6: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांग जनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
7: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा

0: रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा, हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है, इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में ही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान तैयार किया जंगल, 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद स्विस प्रेसिडेंट गी पामेला इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल कार्गो वॉयज फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम दिस मॉर्निंग। IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will also call on President Parmelin. More from our correspondent.
3: Earlier in February,

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से तथा पूर्वोत्तर समाचार आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्लंग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आइए दोस्तों सुनते हैं बाबिल सुप्रियो की आवाज में कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने।

Vamos lá, Scorsese.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनवाए जा रहे थे गायक बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। सुनते हैं पुआरांचलिक बाटोरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पुआरांचलिक पाटोरी, रिले के गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पलंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं आज के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। आइए सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत। कलाकार हैं होयलाल थियांग नेइबोम और उनके साथी

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति गीत होयलाल ठेंगनी बम और उनके साथियों की आवाज़ों में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। प्रस्तुत है रांगखोल कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे भक्ति गीत लोरेन पनलाल पुई रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में।

लोरेन वनलाल पुईरांखोल और उनके साथियों के गाए इसी गीत के साथ ही रांखोल भक्ति गीतों का कार्यक्रम ही समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम भक्ति गीत लेकर आ रहे हैं डेनियल तारियंग और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति गीत डेनियल तारियंग और उनके साथियों की आवाज़ों में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पलंग केंद्र है। आइए सुनते हैं व्याते कार्यक्रम। आधुनिक गीत लेकर आ रहे हैं यहाँ की नमलाई और उनके साथी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे व्याते कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक गीत गंगा की गमलाई और उनके साथियों की आवाज़ों में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हपलंग केंद्र है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। आपको सुनवाए जा रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आप सुनते रहें विविध भारती के कार्यक्रम। आगे आपके साथ रहेंगे सिद्धार्थ पांडे, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
1: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
1: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
1: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह।
1: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
1: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
1: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
1: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
1: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
1: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 0.5 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
1: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर कोई पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
0: ओहो,
1: तो ये तपस्या होती है
0: जी
1: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
1: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
1: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
1: उसकी साधना है।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
1: परमेश्वर। तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई, और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
0: जी जी,
1: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
1: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती है,
1: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई, और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कवाल जो थे उन्होंने
0: जी,
1: दी
0: जी।
1: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
0: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
1: तमाम
0: प्रदेशों में,
1: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
0: जी,
1: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
0: साउथ हो,
1: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15,000-20,000 गाने तो मामूली बात है।
0: बाप रे बाप रे बाप, एक इतना, जीवन काल में इतना काम। जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
1: बहुत खुश थे जी। और 60 आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
0: वाह वाह।
1: और वो 17,000 रुपए का घर था।
0: क्या बात है।
1: तो पहला घर अपना
0: किस इलाके में था?
1: खार में।
0: जी जी,
1: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
0: जी।
1: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8,000 रुपए कर्जा था।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: आधा कर्जा था।
1: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
0: काम तो कर ही रहे थे।
1: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
0: जी।
1: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
0: जी जी जी।
1: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
0: जी।
1: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे तो लड़का अरेंजर बन गया
0: जी।
1: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिकली है।
0: बिल्कुल।
1: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
0: म्यूजिक डायरेक्टर
1: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है।

0: खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे।
1: जी ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये
0: जी
1: अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं,
0: जी
1: लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है
0: जी
1: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का,
0: जी जी
1: जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
1: जी
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेवेस्टिन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ,
1: जी
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे,
1: नोटेशंस
0: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशंस।
0: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी
1: और
0: है।
1: वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी
1: में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
1: जी
0: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है,
1: जी
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन साहब को पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिशन, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके,
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो।
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर
1: अरेंजर है।
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहां पे,
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
0: सोनिक जी,
1: सोनिक ओमी की
0: सोनिक
1: जोड़ी
0: ओमी,
1: थी।
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो
1: जी
0: ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह वाह।
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था,
1: जी
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था,
1: हाँ
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था, मुझे आज भी याद है। बोले नहीं राज, तुम कहीं मिस कर रहे हो,
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने
1: वाह
0: शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी
0: ये
1: सोनिक जी की
0: मेमोरी, क्योंकि
1: गजब।
0: ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहाँ पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा। सुना, ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां पे, ओके टेक करो।
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है, नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी
0: म्यूजिशंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए, सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया,
1: जी
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं
0: मैं
1: खुद।
0: अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का,
1: जी
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का।
0: ये मेरी डिसाइड है,
1: जी
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ, जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था,
1: जी
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी। म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो सोएन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे ही अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत देसाई साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पाटे जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याणजनन जी के साथ, बासु मुरारी आडे बर्मन के साथ काम किया, एच डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल
0: उनके
1: को।
0: स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी
0: मैंने, लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए,
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है। तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी गायन प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: वैसे
1: लोगों
0: भी
1: के
0: उन्होंने
1: साथ।
0: काम किया, क्या काम किया उन्होंने एज ए अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है
0: जी।
1: सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत सारे
1: लंबा
0: काम
1: साथ
0: किया।
1: है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी, वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया है।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था।
1: जी जी
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ,
1: आ गई।
0: सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनके पास। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से,
1: वाह वाह,
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए बम्बई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहा। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा है, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह,
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी।
0: वो 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं,
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ। फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये
1: हाँ,
0: भी ठीक है।
1: हाँ,
0: फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: मैं
1: बाप रे,
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के हैं।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है,
1: जी
0: सबसे
1: जी
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे,
0: ये
1: इसके लिए
0: कॉपी,
1: परेशान
0: किसी की
1: रहे।
0: कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
0: ईमानदारी की
1: बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है।
0: जी,
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरिजेंट के लिए बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: हाँ, लेकिन हो नहीं सका।
1: जी, सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी,
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी डैडी,
1: मोपेट। जी
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपये की या 450 रुपये की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
1: हाँ,
0: हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड।
0: जोर से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका। मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है,
1: जी
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप।
1: जी जी उसके
0: आशीर्वाद
1: काबिल
0: आपको
1: होना पड़ता
0: लेना
1: है।
0: पड़ता है,
1: जी
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके RD बर्मन, SD बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और
0: लेकिन उनके
1: लगातार साथ रहा।
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, जी। कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन के साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सब सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: मनोहरी दादा की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे,
0: जी
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे?
0: जी
1: मनोहरी जी,
0: एक,
1: बासु जी,
0: दो,
1: के भूपी जी,
0: तीन,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ,
1: चार, मारुति,
0: पांच,
1: देवीचंद,
0: छ,
1: अमरुत,
0: सात,
1: होमी मुल्ला
0: आठ,
1: और एक चंद्रकांत।
0: नौ। गजब
1: ये
0: गजब।
1: 9 लोग
0: जी
1: उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे ये
1: और
0: सब
1: इसमें
0: फिल्म
1: कई लोग
0: म्यूजिक
1: तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: हाँ।
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: हाँ, चंद्रकांत
0: ये
1: हो
0: एक
1: गया,
0: पूरी टोली का।
1: पूरी टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं, दारू
0: ऐसी
1: पीते हैं,
0: सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके
1: जी
0: बारे में
1: जी
0: बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर,
0: क्या बात है,
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं,
0: जी जी
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
0: जी
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया
1: एक
0: था।
1: जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई
0: ओ
1: और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी की गलती होती केवीएन, गोपी जी की गलती होती केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस? अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
0: क्या बात है,
1: ही इज लाइक ए फ्रेंड, एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
0: वाह।
1: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। फिर सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी,
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए, ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
0: हाँ,
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला।
1: वायलिन सोलो का पीस था
0: अच्छा
1: सागर फिल्म,
0: जी,
1: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
0: अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है, ये
0: हाँ
1: हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी,
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे?
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
0: जी।
1: कितना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे
0: हाँ
1: नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
0: जी,
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई कि उत्तम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर, जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू टंक करके साइन दे, जैसे ये

0: ऐसे
1: स्नैप आ जाए
0: तो हाथ से करना
1: जी,
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ये मैंने ना
1: जी
0: अभी ए,
1: हाँ
0: ये साउंड है
1: जी,
0: ये चाहिए, तार टूट गई।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ये दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की। तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार।
1: हाँ
0: बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूजिक बना तब मुझे समझ में आया कि वो
1: काम करते रहने से हो जाता है।
0: काम करने से हो
1: ये जो
0: जाता
1: अजीब सा गाना था ये कौन सा
0: है।
1: था?
0: नहीं याद नहीं।
1: वो याद नहीं। अच्छा।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले उनकी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग।

0: और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। मेरा साया साथ होगा। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

चंदनदास की आवाज थी, निधा फासली के बोल थे, रंग तरंग कार्यक्रम की ये थी पहली पेशकश। जगजीत कौर की आवाज, बोल मिर्जा शौक के, मौसिकार खयाम।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: प्रेम कथा
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पामला के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पामला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सलमा आगा की आवाज, हसन कमाल के बोल रवि की तर्ज। फिल्म का नाम है निकाह।

निशान फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। सहिर लुधियानवी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम जोशीला।

उत्सव फिल्म का ये गीत था वसंत देव के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरस थी। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के

आप सुन रहे हैं एतबार फिल्म का गाना, अशोक उसले और भूपिंदर की आवाजें, हसन कमाल की बोल बप्पी लहरी की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: सुनो, फिर आती है ममता जी, जो सबकी रेडियो सखी बनी, सुख दुख की बातें करने वाली, वो एक पावन नदी बनी, सखी सहेली के आंगन में वो बहनों की हिम्मत जगाती हैं, ममता मायूस आवाज से वो हर घर को महकाती हैं, और मंदाकिनी जोशी का अंदाज बड़ा ही पावन है, हेलो सहेली और सदाबहार नगमे जैसे महकता सावन है, सहज सरल सौम्य रूप बातों में मिसरी घुलती है जब वो माइक पर आती हैं, यादों की खिड़की खुलती है, सुंदर बातें आपने लिखी है। चलिए आज के पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना है ये, गुलमाल फिल्म का गाना गुलजार साहब के बोल। जब ये गाना बजता है तो जैसे गाने अतीत की तरफ हमें ले जाते हैं, ये गाना अतीत के किस बरस की तरफ, किन यादों की तरफ आपको ले जाता है। इसके अलावा एक और बात, 9 महीने तकरीबन बीत गए इस साल के, इन 9 महीनों में आपने क्या खोया और

आने वाला पल जाने वाला है। हमारे कई श्रोताओं को इस गाने के जरिए मजा आ गया। एक श्रोता ये कहते हैं कि फिल्म गोलमाल का गीत सुनकर उत्पल दत्त याद आ जाते हैं, और याद आता है आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें आगरा का पेठा खिलाऊंगा। उत्पल दत्त का रोल शानदार है। और कुछ श्रोताओं के लिए एक क्विज, एक सवाल, गोलमाल फिल्म के संवाद किस लेखक ने लिखे थे ये बताइएगा। इसके अलावा एक श्रोताएं जो कहते हैं कि रीगल सिनेमा जमशेदपुर में ये फिल्म देखी थी और बस वो तो और याद आ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि

नौ महीनों में कुछ अजीज दोस्तों को खोया है जिनसे हमारा रीयूनियन गुलजार रहता था। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस वर्ष हमने खोवे की बर्फी पाई। भाई ये मजाक का जो तरीका है ये मजेदार है। इसके अलावा एक और श्रोता जो कहते हैं कि अपने कॉलेज और दोस्तों की याद की तरफ घूम गए इस गाने को सुनकर। अक्टूबर अपनी गरिमा और पूरी लालिमा के साथ उपस्थित है और जब ये गीत आने वाला पल रेडियो पर बजता है तो लगता है कुछ भी नया पाने की चाहत में वो सब कुछ गवा देना जो पहले से तुम्हारा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आपने शोले की जो थीम कार्यक्रम को शुरू करते हुए बजाई उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है, देखिए ना बातों बातों में अक्टूबर भी आ गया। कभी धूप तो कभी छांव की तरह जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इस बदलते वक्त में अपनों के साथ रूठने मनाने का ये सुरीला सिलसिला और सात रंग से सजे खूबसूरत सपने ही जीने का असली मजा देते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि रूठना सेहत के लिए नुकसानदायक है और आपस में नोकझोंक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत लिखी हुई लग रही है। चलिए भाई, जब रूठने का जिक्र आ गया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज आप किससे रूठे हुए हैं, आज आप किससे रूठे हुए हैं और क्यों रूठे हुए हैं।

0: अवतार फिल्म का ये गाना राजेश खन्ना और शबाना आजमी, बहुत ही प्यारी सामाजिक फिल्म थी ये, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता जिन्होंने लिखा कि आनंद बख्शी का लिखा ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गोलमाल सबसे पहले दूरदर्शन पर देखी थी, पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में देखता था। घर के बुजुर्गों को ये फिल्म खास तौर पर पसंद आई थी। एक श्रोता ने जवाब दिया है कि शानदार और चुटीले डायलॉग गोलमाल फिल्म के डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में अकेले आदमी को बस एक सच्चा सहारा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी शादी की शुरुआती दिन थे जब मैं अक्सर अपनी पत्नी को ये गीत सुनाता था। वैसे मैं एक गायक हूं और जब पत्नी रूठती हैं तो गाने सुनाकर उनको मना लेता हूं। और फिर एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम आज उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा है। और इसके अलावा ये एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म अवतार के जरिए मुझे एक ये हंगल याद आ गए और शोले की आपने जो ट्यून बजाई उससे भी एक हंगल याद आ गया। एक श्रोता अपनी नवासी से रूठे हैं क्योंकि वो वीडियो कॉल पर उनसे बात नहीं कर रही है। तो ये हमारे श्रोताओं की बातें और कुछ और कमेंट्स जो हमारे श्रोताओं के आए हुए हैं, उसमें से एक श्रोता ये कहते हैं कि वो अपने शहर मिर्ज़ापुर आए हुए हैं और यहाँ अपने विविध भारती के संग हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि आपने याद दिलाया तो याद आया कि अब इस साल के 3 ही महीने बचे हैं और तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं ये गाना इबारत इशारा करती है। और निदा फाजली के बोल आरडी बर्मन का संगीत अक्टूबर का समा कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे गर्मियों से निजात दिलाता हुआ सर्दियों की हल्की दस्तक सुनाता हुआ गुजरे साल के ख्याल लिए हुए अपनी ही धुन में मगन रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ख्वाब जब मैं स्कूल में था तो खुद कविताएं लिखा करता था, फिर जिम्मेदारियों में लिखना कब कहां खो गया मालूम नहीं। और सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत पढ़कर कविताएं लिखने का जुनून जागा है और ख्वाब तो ये है कि विविध भारती मुझे बुलाए और मेरा इंटरव्यू करे। ओ हो बड़ी प्यारी बात। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कतरा कतरा बरसना और लफ्ज हो जाना आसान नहीं है कुछ कहना और शायर हो जाना।
1: दिल आज शायर है गम आज नगमा है सब ये गजल है।
0: फिल्मी दुनिया के सबसे छबीले नायक का गाना
1: दिल आज शायर है गम आज नगमा
0: कौन है वो?

भाई देखिए, ये इतना प्यारा गाना और यूं लगता है कि जैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया। ये प्यार कोई खिलौना नहीं, हर कोई ले जो खरीद। हमारे एक श्रोता ने ये पंक्ति लिखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है, ये गीत ऐसा है जैसे कहीं दूर क्षितिज पर बस मन बढ़ा चला जा रहा है। हीरोइन का चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और हल्की सी मुस्कान इस गीत का पीछा करती है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि संभाजी नगर में अवतार फिल्म देखी थी। उसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम आपसे रूठे हुए हैं क्योंकि आप पहले प्रोग्राम को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करते थे पर अब नहीं करते। भाई ऐसा आपको क्यों लगा? अंदाज तो वही है, कार्यक्रम भी वही है और वैसे ही तो पेश किया जा रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि इस गीत की खासियत यह है कि इसमें कोई अंतरा रिपीट नहीं होता। देवानंद एक ही जगह पर पूरा गीत गाते हैं और साथ में जाहिरा हैं। नीरज ने ये गाने लिखे थे, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गाना सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि देव आनंद गा रहे होंगे। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने विविध भारती की सालगिरह पर प्रसारित कार्यक्रम अच्छा लगा इसकी बधाई दी है और कहा है कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही त्योहारों की खुशबू महसूस होने लगती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अक्टूबर आते ही जो सबसे खुशी की बात होती है वो ये कि विद्यार्थियों के लिए अब छुट्टियां करीब हो जाती हैं। बड़ी बढ़िया बात कही है आपने। और अब मुझे लगता है कि चूंकि शायरी की बातें चली हैं तो इसी तरह के ख्याल को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कितने श्रोता ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लिखते हैं, शेर कहते हैं या कविताएं कहते हैं? कुछ पंक्तियां हमें लिख भेजिए। तब तक शैलेंद्र सिंह ये बात कह रहे हैं। फिल्म बॉबी के जरिए फैशन की एक नई लहर शुरू हुई थी और फैशन की लहर तो घूम फिर कर वापस भी आती है। क्या आपके जमाने में बॉबी के फैशन को अपनाया गया था?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि या लिखते हैं कि हम कविता करते थे, अब कभी कभार जन्मदिन पर चार लाइनें लिख देते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि ऋषि कपूर बेल बॉटम में इस गाने में नजर आते हैं। सचमुच में शायर तो नहीं, लेकिन विविध भारती के लिए थोड़ी सी शायरी कर लेते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, फूलों सी नाजुक चांद सी हंसी हो तुम, मेरे दिल के बागों की अकेली कली हो तुम, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत हो तुम। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी कविता लिखी है, यूं तो जिंदगी भर का सफर पर साथ जब तुम्हारा हो, जिनके अंदाज जीने के अंदाज निराले हो जाते हैं, जीना तो हर हाल में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ तुकबंदियां यूं ही हम कर लेते हैं, मन की तरंगों को शब्दों में समेट लेते हैं, सुरीला सफर संग ताल में ताल कुछ मिला लेते हैं, कोई शाबाशी न दे तो खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं। भाई वाह। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इन नन्ही आंखों में जब भी झांकते हैं हम, भूल जाते हैं जिंदगी के सारे गम, क्या खूब जादू है इन मासूम चेहरों में, हमें फिर से हमारे बचपन से मिलाते हैं हम। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि शैलेंद्र सिंह आए थे नायक बनने, पर राज कपूर की कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और बाद में गायक बन गए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि जब बॉबी आई थी तभी मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे घर का नाम बॉबी रख दिया गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर का आधा सफर ऑफिस पहुंचते पहुंचते निकल गया, अब इबारत क्या देखें जो गाने बाकी हैं, उनकी लिस्ट उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो देर से शामिल हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम के गानों का अंदाजा लगा रहे हैं। तो भाई, इबारत में से एक गाना तो ये है, लेकिन आपको बताना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। और हाँ, जरा ये भी बताइए कि लंच टाइम हो गया है, आपके घर पर आज लंच में क्या बना है।

कई लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से मेन्यू लिख दिया है कि आज उनके लंच में क्या है। एक श्रोता हैं जो मक्के की रोटी और मक्खन है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते। आज सीजन का पहला साग और कढ़ी बनाई है, मक्के की रोटी और मक्खन साथ में है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे

गांव देहात में लंच टाइम नहीं होता, एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन बन जाता है। एक और श्रोता है जो लंच करते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं और कहते हैं कि टिफिन में रोटी मिक्स वेजिटेबल है और दाल चावल और अचार। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज तो भाई हमारे घर में मूली की सब्जी बनी है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उनके यहाँ चना और तुअर की दाल मिक्स करके बनी है हरा धनिया डाल के, और इसके अलावा आलू की सब्जी, और उनको महीनों में 30 दिन आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अक्टूबर की खास बात यह है कि प्रकृति भी शांत हो जाती है, ना बादल ना बिजली, नदी की धारा की तरह शांत हो जाती है। बदली हुई ऋतु का मन पर भी प्रभाव पड़ता है, उदासी और नीरसता को दूर करते हैं अक्टूबर के महीने में आने वाले उत्सव। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंच में आज दाल चावल रोटी और अचार है, ये मेरा फेवरेट खाना है। ये कितने लोगों का फेवरेट खाना है ये भी बताइएगा। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि रजा मुराद पर फिल्माया गया है ये गाना और हमारे शहर के एक मुशायरे में कई बार वो आ चुके हैं। एक श्रोता हैं जिनके घर पर आज दाल बाटी परोसी जा रही है, भाई मुंह में पानी आ गया। एक और श्रोता हैं जिनके घर में है आलू परवल की सब्जी, दही पापड़, कच्ची मिर्च और कढ़ी, ओ हो हो हो हो। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अपनी एक लघु कथा भेज रखी है, पर कार्यक्रम में वक्त कम है और इसलिए लघु कथा पढ़ना यहाँ संभव नहीं है। और एक श्रोता है जिनके घर में बन रही है बेसन की कढ़ी, कोथिंबीर की करी, कमल ककड़ी, भाई क्या क्या मेन्यू है, छोले भटूरे और रोटी किसी के घर का मेन्यू है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में कार्यक्रम करते हुए और यहाँ कोई दाल बाफला खा रहा है, कोई परवल और आलू की सब्जी, और ओ हो हो हो हो। बस अब मुझे लगता है कि अब ये खाने का मेन्यू नहीं पढ़ना चाहिए, गाने के मेन्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातों वाला मेन्यू है इनमें हो गया है मुंह में पानी। छोटी बातें

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई मजा आ गया आज के इस कार्यक्रम में, इतना सारा मेन्यू सुनकर आप लोगों को बांधे रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, देखिए ये जो खाने पीने की बातें हैं इनको सुनकर मुंह में पानी भी आ गया और गला भी फंसने लगा, ये क्या हो रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब आप सबके घर के लंच का मेन्यू सुनकर मुझे अपने घर की रोटी सब्जी नहीं भा रही है। मजेदार है, अभी तो और मेन्यू आने वाला है क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने ये मेन्यू लिख छोड़ा है। इडली सांभर कोई खा रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही है कि मैं तो खाना बनाते बनाते आपको संदेश पोस्ट कर रही हूं और इस चक्कर में 15 मिनट का काम एक घंटे में हो रहा है क्योंकि थोड़ा खाना बनाते हैं फिर मोबाइल उठाते हैं और उस पर कमेंट लिखना शुरू हो जाते हैं। तो भाई खाना बनाने में व्यवधान हो रहा है सुरीला सफर के जरिए। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज कढ़ी आलू की सब्जी साथ में चटनी बनी है। और एक श्रोता है जिनके घर पर मछली इलिश बनी है और आलू की सब्जी। एक श्रोता लिखते हैं कि श्राद्ध के चलते ज्यादातर घरों में खीर पूड़ी हलवा आलू की सब्जी ही मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल यही मेन्यू पोस्ट किया है और कढ़ी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बनी है, दाल बाफला भी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बन रहा है, तो ये बड़ा ही कॉमन मेन्यू नज़र आ रहा है। और राजमा चावल भी किसी किसी के घर पर बने। अब सबसे मज़ेदार बात तो मुझे ये लगी कि ये सारा मेन्यू सुनकर हमारे एक श्रोता ऐसे हैं जिनको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, आप मेरे बारे में भी तो सोचिए ज़रा कि इतने सारे मेन्यू को सुनकर मुझे कितना लालच आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए कि जिस किसी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाना पसंद करते हैं। जैसे इस गाने में ये जो मोहतरमा है ये पलकों की झालर बन रही हैं।

हरजाई फिल्म का ये गाना कितने सारे श्रोताओं को पसंद है और भाई अब बहुत ही शानदार मेन्यू आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ दाल ढोकली सलाद और आम के अचार का भोजन है। एक श्रोता हैं ये लिख रही हैं कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, बहुत दिनों के बाद बेटा घर आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बना है, हरी सब्जी तो वो कम पसंद करता है। आपने विविध भारती के श्रोताओं से मेन्यू पूछा तो मुझे लगा कि मैं इसमें से ही कुछ बना लूं, तो भुट्टे बॉईल कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भाई जब गाने प्रसारित किए जा रहे होते हैं तब आप स्टूडियो में क्या करते हैं, क्योंकि तब तो हम कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सत्तू की लिट्टी और चोखा बनाती हूँ क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, छुट्टियों में जब वो घर आता है तो ये बताता है। एक श्रोता हैं जो अपने पतिदेव के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाती हैं। और एक श्रोता लिख रही हैं कि हर गृहिणी को अपने परिवार में अलग अलग सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं अभी फिजियोथेरेपी करवा के आई हूं और अब फूलगोभी की सब्जी और मूंग की धुली दाल बना रही हूं, लेकिन इतना सारा मेन्यू सुनकर कंफ्यूज हो गई हूं कि भाई मुझे क्या बनाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन यहां एक हैरत की बात सामने ये आई है कि खाना बनाने के बारे में सब कुछ महिलाओं ने ही लिखा है, एक भी पुरुष श्रोता ने ये नहीं लिखा कि वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाते हैं। तो भाई पुरुष श्रोताओं के लिए ये गाना

0: काम की।
1: भाई इस गाने में मोहब्बत बड़े काम की चीज है और ये बेकार बेदाम की चीज है, ये इन दो बातों पर बहस हो रही है। तो चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को लगता है मोहब्बत काम की चीज है, कितनों को लगता है ये बेकार बेदाम की चीज है। लिखिए।

तो भाई हमने आपसे ये पूछा है कि कितने लोगों को लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है और कितने लोगों को लगता है काम की चीज नहीं है।

बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि तकरीबन सभी श्रोताओं ने ये कहा है कि मोहब्बत काम की ही चीज़ है और सुकून से जीने का सबब है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर प्यार ना हो तो जिंदगी नरक हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने मजाक करते हुए ये लिखा है कि शादी से पहले मोहब्बत काम की चीज़ है और शादी के बाद काम की चीज़ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा मेन्यू भी आ रहा है और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम में इतना कम वक्त है कि ये मेन्यू शामिल करूं कि ना करूं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव आया था और वो ये, मैंने कहा था कि भाई जो पुरुष खाना नहीं बनाते घर पर उनके लिए ये गाना और बजाया त्रिशूल का गाना, तो एक श्रोता ने सुझाव दिया कि भाई ऐसे पुरुषों के लिए होना चाहिए ये गाना। अब जरा सोचिए कि लिस्ट में तो नहीं था ये गाना, लेकिन जिन श्रोताओं को खाना बनाना नहीं आता पुरुषों को, उनके लिए तो भाई ये मैं के गई वाला गाना ही सही होना चाहिए। फिर बहुत सारे मेनू जो हैं, अब तमाम श्रोताओं से तो मैं यही कहूँगा कि आप आज ये जो सुरीला सफ़र है इसका, इसके कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा और यहाँ पर जो खाने का मेन्यू है ना, ऐसी लिस्ट बन जाएगी कि कई हफ्तों तक आपके घर पर अच्छा अच्छा खाना बनता ही चला जाएगा। और अब रूठने मनाने वाला गाना, कार्यक्रम का तकरीबन आखिरी गाना है। हमने पूछा था आज कौन किससे रूठा हुआ है।

भाई रूठने की बात तो हो गई। एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा तो किचन में जाना निषिद्ध है क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं आता। अब ये पुरुष श्रोता हैं तो भाई आज ये कहकर इस कार्यक्रम से विदा लेंगे हम कि अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे तो पुरुष श्रोताओं का बनाया हुआ मेन्यू पूछेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, वरना तब तक सीख लीजिए क्योंकि

0: देखिए ना भाई, ये पल किस तरह से बीत गया और कार्यक्रम का वक्त एकदम खत्म हो चुका है। आप सभी के साथ बहुत आनंद आया, आप सभी श्रोताओं ने जिस तरह से कमेंट्स करके साथ दिया और खासतौर पर जिस तरह से आज लंच का मेन्यू बताया, भाई मजा।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements.

0: रोजगार व्यापार उद्योग पर्यटन
1: दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ट्रेड इंडस्ट्री टूरिज्म एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इट विल एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर एमिनिटीज इन द सराउंडिंग विलेजेस एंड टाउन्स दिस एयरपोर्ट इज नॉट जस्ट एन एयरपोर्ट बट द फाउंडेशन ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर रीजन
0: हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है
2: द एयरपोर्ट्स पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी इन द फर्स्ट फेज इज 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर विद प्लान्स टू एक्सपेंड टू 70 मिलियन इन द फ्यूचर दिस एयरपोर्ट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहेंसिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी न्यूज लखनऊ
3: Yemen's internationally recognized government has announced the start of military operations to take back the remaining Houthi-led territories and restore state authority across the country. President and Presidential Leadership Council Chairman Rashid al-Alami said the government had moved from a phase of preparation and readiness to the liberation phase after what he described as the exhaustion of opportunities for de-escalation. More from our correspondent.
4: Yemen's internationally recognized government has announced the start of military operations to retake Houthi-held territories and restore state authority across the country. President Rashid al-Alami announced this saying that the efforts to de-escalate had been exhausted. On the ground, Yemeni forces reported heavy clashes across several fronts in Taiz. They claimed to have thwarted Houthi infiltration attempts and reported hundreds of Houthi casualties. The Houthis, however, have rejected some of these claims. Meanwhile, Saudi Arabia has pledged full operational support to Yemen's armed forces, saying the campaign will continue until the state authority is restored. These developments could potentially escalate the Yemen conflict and open a new phase of fighting. Manish Shiva, Akashwani News, Dubai.
3: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada and Vidarbha and some more parts of Maharashtra and Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The weather agency said thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Telangana, Sub-Himalayan, West Bengal and Lakshadweep till tomorrow. Similar weather conditions are also expected over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura for the day. Meanwhile, strong surface winds are expected over Andhra Pradesh during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon session today. The Sensex rose 218 points to 72,128, while the Nifty added 71 points to 22,493, when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained almost 0.5% and the small-cap 100 index advanced 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के साथ वार्ता की श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
6: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
6: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
5: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
6: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
5: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
6: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
5: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
7: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
1: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
2: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
2: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
3: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
4: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
3: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
5: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांवों और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
3: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: संगीत के साधक
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से सदाबहार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है
0: दुश्मन,
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शकील बदायूं के बोल रवि की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम।

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुमन कल्याणपुर की आवाज, नूर महल फिल्म का ये गीत सबाब खानी के बोल, जानी बाबू कव्वाल की तर्ज़।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सखियां सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार।
2: बिल्कुल वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा लगता है।
1: सब अच्छा लगता है और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और आज हम विषय बता देते हैं, ध्यान रखा जाता है अच्छे खाने से।
1: बिल्कुल।
2: आज हम बताने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला और बफोरी। हमारे साथियों ने भी व्यंजन की इस व्यंजन की रेसिपी भेजकर रखी है तो हम पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और
1: जब साफ सुथरा घर होता है ना तो घर में बैठना रहना कितना अच्छा लगता है।
2: बहुत अच्छा लगता
1: है। अपने पसंद के गाने सुनो, जो चाहे वो करो, अपनी पसंद की किताब पढ़ो या फिर कुछ अगर ऐसे ही कुछ नाचना है मिलके सब परिवार के साथ वो भी कर सकते हैं।
2: कहीं भी देखो, आप कहीं भी होकर के आओ, घूम फिर के आओ, आपको चाहे कितनी भी सुविधाएं मिली हो लेकिन जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो हमें स्वर्ग से कम नहीं लगता है।
1: हाँ,
2: है
1: ना? कैसे सुकून वाली हम सांस लेते ना। हाँ, घर आ गए।
2: और आज कथा सुधा में हम अमावस की रात का भाग दो सुनवाने वाले हैं।
1: बिल्कुल। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने संदेशों में भेजा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कहानी।
2: बिल्कुल। और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सुनेंगे एक गीत।
1: बिल्कुल भाई, संवाद तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ में गीतों का होना बहुत आवश्यक है।

0: मंजरी, दिल भले आज ना दे या कल ना दे, लेकिन कहानी सुनने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं कहानी
0: अमावस की रात।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। अब तक आपने सुना,
4: दीपावली की संध्या थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।
3: आइए अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
4: वही अमावस्या की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरिजा का दवा दर्पण कर सकें। क्या करें, इस निष्ठुर वैद्य को यहां कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तहार छापता, तेरी दवाइयां कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा की भांति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक एक कर दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वो कागजी पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद के अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूंड से उस अरण्य के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर द्वारपालों की भांति खड़े थे। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। माथे पर अर्ध चंद्राकार चंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले,
5: आपका आगमन कहां से हुआ है?
4: नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया,
5: मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है, मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हुआ।
4: पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले,
6: यह आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं।
4: इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी। वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को अपने पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया है। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा,
5: आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी।
4: देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले,
6: संभवतः हो, कुछ कह नहीं सकते।
4: ठाकुर ने बहुत लापरवाही से कहा,
5: ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे।
4: पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था।
6: शंका होने लगी है कि कहीं भाग्य हरे भाग ना दिखा रहा हो। कौन जाने वो पुर्जा जलकर राख हो गया या नहीं। यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वो पत्री मिल जाए। हमने अनेक कष्ट सहे हैं, अब हम पर दया करो।
4: इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूदे, तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले,
6: प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो अब तो बच जाएगी गिरजा, अब तो बच जाएगी।
4: उन्मत्तता में उन्हें ये एकदम नहीं जान पड़ा कि गिरजा अब नहीं है, केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए। परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
6: लीजिए, वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए।
4: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि यह संदेह निरर्थक था किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
5: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
4: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1,000 के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क

रहा था। नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

0: वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतःपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेट कर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है, जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा कैसी तभी।
0: किंतु जब गिरिजा तनिक भी न मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
1: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है, बड़ा मैं।

0: अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त, नंगे सिर नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी, ये 75,000 के नोट हैं, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर निछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। इन रुपयों से कई गुना प्यारी।
0: वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि ना होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
0: ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पाटेकर, ठाकुर नवयुवक दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत जरूरी शिक्षक
0: ज्यादा जरूरी
1: है ना। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है प्रभावशाली बनाता है तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना जिसे कहते हैं ना संवाद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाइयों को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूं और मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जो टीचर होते हैं हमारे शिक्षक होते हैं तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हो और हर बच्चे वही समझे, आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है। इसको किस भाषा में सरल भाषा में समझ में आता है, कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही बात का आ गया है एक संदेश के द्वारा। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
1: बिल्कुल और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञान वर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात लिखी
0: बहुत अच्छे से बताया और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत जरूरी है, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम घर में नहीं बोल पाते।
1: बिल्कुल
0: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नजदीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते।
1: बिल्कुल और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है संकोची होते हैं याद नहीं हुआ तो वो पीछे बैठ जाते हैं जा करके और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं ज्ञानी होते हैं कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि तुम
0: नजर
1: पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। ये संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
0: बिल्कुल जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी निडर वाली हो जाए ना तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है।
1: बिल्कुल
0: और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयां साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे। बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
1: कभी
0: बताएंगे नहीं, चुप ही रहेंगे, तो एक शिक्षक या शिक्षिका बता क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या किस तरह उन्हें बोले या बताएं कि समझाएं।
1: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए।
0: कभी कभी डरते भी हैं सबके सामने बोलने।
1: तो जो हम जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते हैं, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है। आपसी विश्वास बढ़ता है, समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है, मानसिक तनाव में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं, उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है
0: कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं।
1: हाँ, आगे काम आएंगे,
0: काम आएंगे, है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो नहीं हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
1: देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है, तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन में बढ़ने की राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं ना। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं
0: है, और संगीत से बड़ा भी कोई शिक्षक नहीं
1: जी।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है,
1: बिल्कुल,
0: तो चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले,
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं हिलेंगे।
1: तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे, हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा ना होने दें, जो चीज लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
0: बिल्कुल सही कहा, और घर में हर सामान की एक निश्चित जगह होनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद चीज को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है, और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताज़ी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
1: बिल्कुल, और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंक, गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें। बाथरूम की सफाई को टाले नहीं, गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज़्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें। खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है, और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
0: बिल्कुल, और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते
1: बिल्कुल,
0: हैं ना?
1: बिल्कुल,
0: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर घर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होते हैं सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो स्विच बोर्ड सबकी उंगलियों के
1: निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया,
0: करना बहुत जरूरी है।
1: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों, कपूर या हल्के प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
0: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही ये भी साफ कर दो, ये भी साफ कर दो, नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होते हैं उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे, अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या
1: बिल्कुल
0: जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह से घर के जो हमारे श्रोता भाई हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर के महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो आप आकर हमें डांट सकते हैं
1: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। और हमारे साथी और लिखते हैं कि सुकून भरे स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थान हो, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ ये लिखते हैं, और स्वच्छता जहाँ होती वहाँ पे बरकत होती। बहुत सही बात का है, हमें घर के साथ साथ जो चीजें आपने लिखी जहाँ जहाँ के बारे में, उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य कि हम उन्हें साफ रखें।
0: बिल्कुल। अच्छा एक और संदेश ये कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहाँ शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है, जहाँ धूल नहीं होती वहाँ बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है, और जहाँ हर चीज अपनी जगह पर है वहाँ विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आंखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है, और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ सारी बात एक
1: उसमें डाल दी
0: समा गई।
1: बिल्कुल, हम एक साथी लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्रि में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है, अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है।
0: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है, फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: भाई देखो, घर भी सुंदर हो, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं तो वो घर और भी सुंदर लगेगा, है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है तो वहां कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं बल्कि जीवन की उलझनों को बुहार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहाँ पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहाँ हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है और बुहार कर जो शब्द आया है ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना।
0: अच्छा, एक शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, इन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेजों की जाँच करें, रैपर है, रसीद हैं या कप वहां पड़े रहते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में भी सुबह की चाय हो ही जाती है, वो सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें। दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने के से जगह जो है वो ताजा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब अगर आप ऑफिस पे हैं या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पे आपका सिटिंग जॉब है तो ये बीच बीच में 2-2 मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ, ये ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं।
1: कई बार तो क्या होता है कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पर आपने कोने में सामान रखा है लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर कर देता है।
0: हर घर में डाइनिंग टेबल
1: कोना भरे रहते जमाने के लिए, क्योंकि लगता है ये चीज भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी ले लेंगे, नमक भी ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे। अरे भाई, इसको थोड़ा किनारे रखो,
0: भले आप रखे उस पर सामान लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है, डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं। बेशक खाइए, लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसा सामान उठा करके ला के
1: अलमारी ना बनाइए। चलो एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द

0: is probably, I think, was destined or decided by him. तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है। अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी को भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में, खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए जिन की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
3: हमने साफ सुथरा कर लिया, सब
4: तो खाना भी तो पका ले,
3: तो बहुत भूख लगी
4: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
3: और बताइएगा कैसा लगा।
4: तो हमारे एक साथी ने भेजा है, चौसेला छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खासतौर से त्योहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए, तलने के लिए, वो अंदाज से ले लीजिए। गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार। चौसेला बनाने की विधि है कि एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नमक, अजवाइन या जीरा मिला लें। उबलते पानी में ही थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हथेलियों से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं। और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
3: बिल्कुल। और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिलीजुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियां 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी 1/2 छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकालकर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पीसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चुपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें। इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें। इसे ढक कर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आँच पर भाप में पकाना है। और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें। इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
4: अरे स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना?
3: बनाने वाली हूँ। तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली
4: हूँ। सुना दो।

0: पहली बार
1: शाम सुहानी आई खुशियां बंधे पहली बार आज कई
2: तो दीपा तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
3: गा के नहीं भाई, जिंदादिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
2: अच्छा,
3: सुनाएंगे गाना।
2: चीटिंग करी है तुमने।
3: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं कही है। और देखो हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन समय के साथ
2: घड़ी नहीं करने देगी, है ना?
3: नहीं करने देगी। वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
2: चलो अब दोनों बहने निकलो, चलो। तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और
3: जी
2: दीपा मंजरी का नमस्कार बोलो,
3: और मंजरी का नमस्कार।
2: चलो ठीक है, ओके।
3: कार्यक्रम सखी सहेली के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।

0: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रपति पामला शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की पांचवें दौर की बातचीत करेंगे। इस व्यापार समझौते के दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। यह वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यह याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोप के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल को 30 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है। यह पोर्टल लोगों को अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने वाले नागरिक संचार साथी पोर्टल के साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल, ऊंची कीमतें और खाद्य मुद्रा स्फीति तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: पीरियड मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मीन्स बॉडी में एस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
3: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत जरूरी है।
2: यस,
3: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा। एक गीत सुन ले आपकी पसंद का।
2: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
3: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती है, सुनते हैं ये गीत।

0: तो जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पाँव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम, ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमोटर सिम्टम्स हैं। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: जी, अच्छा
1: जी। तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट। तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले, समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है। आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं व्हील चेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को जान के, उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफ़ी हद तक, काफ़ी एज तक, 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
0: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा।
1: जी डेफिनेटली
0: ध्यान रखना होगा। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने महावारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती हैं अगर आपने ध्यान नहीं रखा
1: जी,
0: तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे?
1: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अर गायनेक गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं. तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए. बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं. और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं. और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन.
0: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है. तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पाते हैं. लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई.
1: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है. तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो, जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है. तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सॉल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए.
0: जी, तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं.
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए.
0: क्या बात है. लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई है. गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए. उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
1: आशा भोसले
0: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है। आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करे,
0: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें, जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती है। जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस, और मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोस्फियर, जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
0: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते
1: हैं। जी,
0: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर।
1: जी,
0: तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं, और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
1: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुली ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज़ में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे की देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नजरअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
0: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है।
1: जी,
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वही खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा।
1: यस एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात। और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
1: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं
0: होती। अच्छा,
1: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है
0: जी,
1: जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती
0: है, महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
1: जी, तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है, तो

0: अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं. थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप पीसीओ हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
1: चाहिए जी. यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
0: इज फाइन
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए जी. तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो. ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें. होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं. काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है. तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिंस की डेफिशिएंसी, काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है. तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं?
1: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे जी. और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे.
0: यस.
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे.
0: यस. और फिर सो जाते थे थक के. यस.
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था
0: जी. जी.
1: और घर का बना हुआ खाना, ना उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं.
0: जी जी, बिल्कुल.
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है
0: जी.
1: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए. सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को देखें.
0: यस. तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है
1: जी.
0: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है.
1: बहुत अच्छी बात आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है.
0: बहुत. काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे यू नो कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को. इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और खुद भी वो फॉलो करना है. एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहां 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है. तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा.
1: बिल्कुल आपने कहा. और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी
0: जी.
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं. कौन सा गीत सुनेंगी आप?
0: देयर आर सो मेनी. तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम,
1: ये गाना सुनना चाहती हैं. फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में. चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत.

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ है कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब। और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस। और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है,

0: तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है. तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है
1: जी.
0: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है. IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम 4-5 या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले. तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं. नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है. हम इंजेक्शन दे के ज्यादा अंडा, जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स, हम स्टिमुलेट करते हैं. उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं. और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं. फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं. अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं. एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं. फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं. नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं. और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज. तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं.
1: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या. तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
0: तो सबको तो नहीं होती है. कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया. इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
1: अच्छा,
0: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है. इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
1: अच्छा
0: जी, अगर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब IVF ऐसा नहीं है कि IVF करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ IVF सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि IVF से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: ध्यान है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: Yes.
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है, बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: सामने रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि, और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एक फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। कि एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टन टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।
1: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। इसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है

0: अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने ही वाले हैं। इसी के साथ ही आज की पहली सभा संपन्न होती है। दूसरी सभा लेकर शाम के 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम शाम की ये दूसरी सभा प्रारंभ करते हैं।

तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। अब से कुछ ही समय बाद आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनेंगे मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज सुन पाएंगे कुछ मार लोकगीत एल चंगथो मार और साथियों की आवाज़ में। हाइदवाइंग क्वामे और साथी सुनवाएंगे कुछ जेमे भक्ति गीत जेमे कार्यक्रम में 6:25 पर। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से असमिया में समाचार रिले किए जाएंगे 6:45 पर। शाम 7:00 डिमासा कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ डिमासा आधुनिक गीत कनक कैम्प्राई और साथियों के आवाज़ में।

कार्बी कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ कार्बी आधुनिक गीत शरण मिलिकपी और साथियों की आवाज में। समय रहेगा 7:20 पर। 7:40 पर कुकी कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ कुकी आधुनिक गीत नेमहार चंगलोई और साथियों की आवाज में। पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक रात 8:00। 8:30 पर आप फिल्मी गीत सुन पाएंगे, इसमें आज आप एक ही फिल्म के गीत सुनेंगे। 8:45 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे तथा रात 9:00 आप सुनेंगे असमिया गीत, इसमें आज के गायक कलाकार हैं संगीता काकुति और दीपक। उसके पश्चात 9:30 से आप सुनेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम चित्र गीत। तो श्रोताओं, यह था हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनिए मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ मार लोकगीत एल चंगथो मार और साथियों की आवाज़ में।

0: cama tem cuidado.
1: É.

לכולם, אהה, כאן הכל אין שרעי.

का

وخلاص.

Era

श्रोताओं, अभी आप मार कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ मार लोकगीत एल चंगथोमार और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है जेमे कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए जेमे भक्ति गीत हाई दुआइंग क्वामे और साथियों की आवाज में।

श्रोताओ, अभी आप जिमे कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ जिमे भक्ति गीत हेदवाइंग क्वा में और साथियों की आवाज में। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हंधियार आंचलिक बतरी रिले किए जाएंगे।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। चलिए श्रोताओं, स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं डिमासा कार्यक्रम के तहत कुछ डिमासा आधुनिक गीत कनक कैंपराई और साथियों के आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप डिमासा कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ डिमासा आधुनिक गीत कनक केम्पराई और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्बी कार्यक्रम। तो चलिए आज सुनते हैं शरण मिलिप्पी और साथियों से कुछ कार्बी आधुनिक गीत।

श्रोताओं, अभी आप कार्बी कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ कार्बी आधुनिक गीत शरण मिलिकपी और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब हमारे कुकी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कुकी कार्यक्रम। इसके तहत आज सुनिए कुछ कुकी आधुनिक गीत नेमहार चंगलोई और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीत। इसमें आज सुनिए एक ही फिल्म के गीत। इसमें आज का फिल्म है मैंने प्यार किया। इसके गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम।

श्रोता, अभी आप एक ही फिल्म से इसके तहत सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का कुछ गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर TST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति

0: अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public@airnewsalerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
2: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
3: आज एमओयू में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
4: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
5: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
6: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
7: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
5: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
8: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना, 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को

0: दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 पीएम। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एसएमएस या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: श्रोताओं अब प्रस्तुत है असमिया गीत। इसमें आज के गायक कलाकार हैं संगीता काकोती और दीपक। तो लीजिए आनंद लीजिए इन असमिया गीतों का।

0: श्रोताओं, अभी आप असमिया गीत सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आप लंग केंद्र है. तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं चित्रगीत कार्यक्रम के तहत कुछ हिंदी फिल्मी गीत. पहला गीत सुनिए, तुमसे अच्छा कौन है. इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया है कुमार शानू ने.

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत सुन रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय रात के 10 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल सुबह की पहली सभा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।